0: KZSU Stanford.
1: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल साथियों, यह है KZSU Stanford 90.1 FM. मैं हूँ प्रांजलि और आप सुन रहे हैं चाय टाइम.
2: KZSU Zootopia is our robot curated music service that takes over when our live DJs aren't available. Like a self-driving car, Zootopia operates with no human at the controls. Zootopia now streams epic tracks from thousands of our DJs' most played albums over nearly the past two decades, so you can enjoy the best of college radio KZSU style. Check out our live playlist at kzsu.rocks. Zootopia, truly the Bay Area's coolest college radio on KZSU.
1: साथियों, जब भी कभी मैं किसी महान इंसान से रूबरू होती हूँ या किसी सफल इंसान से मिलती हूँ तो बस यही सोचती हूँ कि उसकी कहानी के पीछे दो शख्स हैं, उसकी माँ और उसके पिताजी, जिन्होंने इस कहानी को रचा है, गढ़ा है, आकार दिया है, वजूद दिया है. और ऐसी ही एक सफल कहानी जो अनवरत चल रही है और जिसका नाम है अमिताभ बच्चन. मेरे हाथ में उनके बाबूजी हरिवंश राय बच्चन की जीवनी का दूसरा हिस्सा और सामने खुला है वो पन्ना जिस पर अंकित है वो दिन जब अमित जी पैदा हुए थे. हरिवंश राय को बेटा पैदा हुआ और महाकवि सुमित्रा नंदन पंत ने उसे नाम दिया अमिताभ, जिसकी कोई सीमा नहीं. बच्चन जी कहते हैं कि पिता बनने की अनुभूति और उसके उल्लास को गद्य वहन नहीं कर सकता, इसलिए उस दिवस की स्मृति में लिखी कविता का आश्रय लेना चाहता हूं. और आगे उनकी कविता है, फुल्ल कमल गोद नवल मोद नवल गेह में विनोद नवल बाल नवल लाल नवल दीपक में ज्वाल नवल दूध नवल पूत नवल वंश में विभूति नवल नवल दृश्य नवल दृष्टि जीवन का नव भविष्य जीवन की नवल सृष्टि. यही दुआ है कि ये कहानी यूं ही चलती रहे, ऐसे ही सफल सज्जन विनम्र अविरल अनवरत.
3: और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे.
4: हाँ, क्यों?
3: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता. डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है.
5: विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम. बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन. गांव मांडवा. उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन. ए 16 घंटा चलवे.
6: मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा. 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं. बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम. बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे.
7: बाबूशाही,
8: ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो. हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया. आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है. क्या है तुम्हारे पास?
9: मेरे पास माँ है
1: और हमारे पास अमिताभ है. दोस्तों, चाय टाइम जश्न है आवाज का और आप अभिनय, सुर, कला सबकी तालीम ले सकते हैं, लेकिन आवाज, अच्छी आवाज आप ऊपर वाले से लेकर आते हैं. और जब दमदार जादू भरी आवाज की फहरिस्त बनेगी तो अमिताभ बच्चन के लिए मैं यही कहूंगी कि लाइन वहां से शुरू होती है जहां अमिताभ बच्चन खड़े होते हैं. ये आवाज पिछले 43-44 सालों से फिल्म जगत में गूंज रही है. लोग उन्हें महानायक, शहंशाह, बिग बी, न जाने कितने नामों से जानते हैं, लेकिन मेरे लिए अमिताभ सबसे पहले अपने बाबूजी के यानी हरिवंश राय जी के सुपुत्र हैं. तो सबसे पहले हम सुनेंगे जो बाबूजी ने लिखा और जो बेटे ने गाया. उसके बाद हम सुनेंगे अमित जी पर फिल्माए गए कुछ गाने और फिर अमित जी के गाए हुए कुछ गाने. तो सबसे पहले हरिवंश राय जी की कविताएं अमिताभ की आवाज में.
10: और चारों ओर दुनिया सो रही थी, तारिकाएं ही गगन की जानती हैं जो दशा दिल की तुम्हारे हो रही थी. मैं तुम्हारे पास होकर दूर तुमसे, मैं तुम्हारे पास होकर दूर तुमसे, अध जगा सा और अध सोया हुआ सा, रात आधी खींच कर मेरी हथेली एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने.

Agnipat, Agnipat, Agnipat, वृक्ष हों भले खड़े हों घने हों बड़े, एक पत्र छांह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अग्निदेश से आता हूं मैं, झुलस गया तन, झुलस गया मन, झुलस गया कवि कोमल जीवन, किंतु अग्निवीणा पर अपने दग्ध कंठ से गाता हूं मैं, अग्निदेश से आता हूं मैं। कंचन ही था जो बच पाया, उसे लुटाता मग में आया, दीनों का मैं वेश किए हूं, दीन नहीं हूं, दाता हूं मैं, अग्निदेश से आता हूं मैं। तुमने अपने कर फैलाए, लेकिन देर बड़ी कर आए, कंचन तो लुट चुका पथिक, अब लूटो राख लुटाता हूं मैं, अग्निदेश से आता हूं मैं।

मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार। एक अकेले हूं या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनकी जिह्वा पर होता है उनके अंतर का अंगार, नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आतताइयों की शमशीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़।

0: जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहां पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौंचक्का सा, आ गया कहां क्या करूं यहां जाऊं किस जा, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। यूं बाहर की रेला ठेली ही क्या कम थी, जो भीतर भी भावों का उहा पोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला।
1: अच्छी आवाज, साथ ही साफ उच्चारण, एक एक शब्द स्पष्ट, भाषा पर प्रभुत्व, बस सुने तो सुनते जाएं। अमिताभ ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था एक सूत्रधार के रूप में मृणाल सेन की एक फिल्म से। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी सात हिंदुस्तानी, जिसके लिए उन्हें मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और उन्होंने उसकी सार्थकता साबित कर दी आने वाली अगली फिल्मों से। सबको भा गया था आनंद का वो गंभीर बाबू मोशाय, जिसने उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना के होते हुए भी अपनी अलग छाप छोड़ी। उसके बाद एक के बाद एक अच्छी अच्छी फिल्में आती गईं और अमिताभ लोगों के दिल में जगह बनाने लगे। उसी दौर की एक फिल्म थी मिली, बहुत अच्छी कहानी, जया और अमिताभ का अभिनय और अच्छे गाने। तो फिल्म मिली से हम सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में

अमित जी ने बहुत फिल्मों में बहुत अच्छा अभिनय किया है, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी ने न केवल मिले में लेकिन अपनी हर फिल्म में हमें एक अलग अमिताभ से मिलाया है। अमित जी के जीवन में एक नया दौर आया फिल्म जंजीर से। सलीम जावेद की जोड़ी ने जब फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ को शत्रुघ्न सिन्हा से लड़ाई का एक सीन करते देखा तो बस अपनी अगली पटकथा के लिए उन्हें एंग्री यंग मैन मिल गया, और फिर इस एंग्री यंग मैन ने कभी पलट कर नहीं देखा। दीवार फिल्म का एक एक डायलॉग अमिताभ का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा। इस दौर की मेरी सबसे मनपसंद फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर। बचपन में जब पहली बार स्क्रीन पर मोटर बाइक पर स्टंट करते गाते हुए अमिताभ बच्चन को देखा था तो बस देखते ही रह गई थी, और उसी तरह स्टेज पर जब उन्होंने अभिनीत किया था गाना तेरे बिना भी क्या जीना, देखते ही रह गई थी। इसी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में वो साथी।

पार्श्व गायकों के गाए गानों पर अमित जी ने हमेशा ही उम्दा अभिनय किया है, लेकिन मिस्टर नटवरलाल इस फिल्म में अमित जी ने पहली बार एक गाना गाया। आनंद बख्शी ने इस गीत को बच्चों के लिए लिखा और अमित जी ने इस खूबसूरती से इसे गाया कि बच्चे बच्चे और बड़े बड़े की जुबान पर ये गाना आ गया। हम सुनते हैं मेरे पास आओ।

0: वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं चुरमी, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ।

0: ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। अमित जी, मैं भी अपने आप से सवाल हमेशा पूछा करती हूँ। दीवार, कभी कभी, सिलसिला, त्रिशूल, काला पत्थर, मोहब्बतें, अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा का नाता बहुत पुराना और बहुत गहरा रहा है। तो यश जी के लिए उनकी फिल्म सिलसिला से हम सुनते हैं अमित जी को।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

friends, this is KZSU Stanford 90.1 FM and you're listening to Chai Time. और चाय टाइम में आप सुन रहे हैं अमित जी पर फिल्माए गए गाने और अमित जी के गाए गाने. साथियों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बार आपकी उम्र हो गई तो फिर आपकी तरफ कोई नहीं देखता, आपका स्टारडम धूमिल पड़ने लगता है. लेकिन इसे भी झुटलाया अमित जी ने. उनको केंद्र में रखकर उनके लिए कहानियां लिखी जाने लगी. क्रिकेट में हम उसे महान मानते हैं जो अपनी दोनों पारियां उम्दा खेले, और अमित जी ने इसे साकार किया अपनी फिल्मों में. उनकी दूसरी पारी भी उतनी ही दमदार है जितनी की पहली. ब्लैक, खाकी, देव, निशब, लक्ष्य, चीनी कम पा और कितनी ही ढेर सारी फिल्में. ऐसी ही एक फिल्म थी बागबान, जिसे पुरानी और नई पीढ़ी दोनों ने सराहा. आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में अमित जी ने इस फिल्म के गानों को आवाज दी. अगला गाना इस फिल्म से चली चली.

0: अमित जी पर सबसे ज्यादा फपती है उनकी खुद की आवाज, और उस आवाज के बहुत करीब है सुदेश भोसले और किशोर कुमार की आवाजें। लेकिन एक आवाज है जो अमित जी की आवाज से एकदम अलग है, मुकेश की आवाज। लेकिन अमित जी ने अपने अभिनय से इस अंतर को पूरा कर दिया फिल्म कभी कभी के अगले गाने में। मैं पल दो पल का शायर हूं।
1: कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है।

अमित जी तो हर एक पल के शायर हैं। तो साथियों, यह है KZSU स्टैनफर्ड 90.1 FM, आप सुन रहे हैं अमित जी के गाने। तो आज का एपिसोड और पिछले सारे एपिसोड आप फिर से सुन सकते हैं soundcloud.com/chaitimeradio पर। 1981 में एक फिल्म आई थी याराना, इसमें एक गाना था जिसे लिखा था अनजान ने, संगीत दिया था राजेश रोशन ने और उसे गाया था किशोर कुमार ने, छूकर मेरे मन को।

अगला गाना जो हम सुनने जा रहे हैं वो खुद अमिताभ ने गाया है। अमित जी ने अपनी फिल्मों में यूँ तो बहुत अच्छे गाने गाए हैं, लेकिन कहानी का ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, एकला चलो रे। ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो महात्मा गांधी के मनपसंद गानों में से एक था, और इसके कई सारे रेंडिशंस हैं, लेकिन अमित जी ने इसे बहुत दिल से, बहुत ही खूबसूरती से गाया है। तो हम सुनते हैं एकला चलो रे।

0: दोस्तों, इलाहाबाद का ये छोरा बंबई आया और शहंशाह बन बैठा। फिल्म कुली के दौरान हुई दुर्घटना में घायल अमिताभ जब हॉस्पिटल में थे तो जैसे सारा देश हिल उठा। हर जगह उनके लिए प्रार्थनाएं हुई, मन्नतें मांगी गईं और लोगों का प्यार और उनकी दुआओं का ही असर था कि अमिताभ मौत के मुंह से वापस आ गए। हर बार जब वो नीचे आते हैं तो उनकी जो शिद्दत है जिससे वो ऊपर उठते हैं और हमेशा एक नया मकाम बनाते हैं। जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अमित जी की उपलब्धियों को एक चाय टाइम में बांध पाना नामुमकिन है। ये अंडरवर्ल्ड का तो नहीं लेकिन फिल्म जगत का डॉन जरूर है। तो अगला गाना हम सुनते हैं फिल्म डॉन से किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की आवाज में, खई के पान बनारस वाला।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

तो साथियों, हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन को बेटा हुआ और सुमित्रा नंदन पंत ने उसका नाम रखा अमिताभ। अमिताभ यानी ऐसी आभा, ऐसा प्रकाश जो अमित है, कभी मिटता नहीं है। पंत जी ने नाम दिया और अमिताभ ने उसे साकार कर दिखाया। बस यही दुआ है कि ये प्रकाश ऐसा ही दैदीप्यमान रहे, चाहे फिल्मों में हो या कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर हो। अमिताभ बच्चन जी से हम हमेशा रूबरू होते रहें, उन्हें हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते देखते रहें। उनके बाबूजी के शब्दों में कहें तो, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। उनका कद, उनकी आवाज, उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनका अभिनय, उनकी सफलता, अमित जी तो बस सिर्फ एक हैं, लेकिन वो लाखों में करोड़ों में एक हैं अपनी विनम्रता, शालीनता और सादगी के कारण। अमिताभ बच्चन को लंबी उम्र मिले, वो हमेशा ऐसे ही पर्दे पर और हमारे दिलों पर छाए रहें। दोस्तों, चाय टाइम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस सिर्फ एक और गाना और फिर मैं विदा चाहूंगी आपसे। आपका आने वाला हफ्ता अच्छे से गुजरे, अच्छे से बीते, यही दुआ है। फिर बातें होंगी इसी समय इसी दिन। तो जाते जाते आपके लिए हरिवंश राय जी का लिखा और अमिताभ बच्चन का गाया लोकगीत फिल्म सिलसिला से।